0: 里等烂鸡拆熊，
1: 敌人总败一熊，
0: 敌人总比你们，
1: 阿拉等干那罗罗。
0: 尊巴一个木，
1: 尊巴一个木。
2: 第一首《青瓦米林等等》过来，第二等爸爸十六岁，你们等等就来。
3: 你神经头慢了，就着急哟。你得着伢坑等啥坑？混凿坑距离近，更大样门主儿，一些那不轮子熟悉你的白银，跟着吕洞下就三路样口儿用。我讲黑家园他们个李红兰姐都活动特明白等，别做戏呢，他人经济了不行投资，俺来一起哟。
2: 第一所青瓦米林等等过来，第二等爸爸十六岁，你们等等就来。
4: 俺五七的娃子人，茶龙等着举办呢，俺原来些那就那么举办些的。我讲五七的那部地图得劲嘛，他们那我先把我妈去叫个。ये ना यंग युना ना शरा यों जो गई दायों ने जो नो चेना अंग सेमा नार्की चिरियों के
3: अपा चौन्य मिठू ना हुन्यां दो का
5: तामु शरा चकनरी सीमा चिको
2: दी जसो चिन वार मिलम दंत करे देर दन बाबा सलिम्सी नेम दंत जोले
5: हम बाज ये नो ताके ली कर न्यान चिंचिया युवा में बाने हंसों की वाशी मारे ये ना यंग आज कांच ची ही ना छह सुन्जिया गना तुम ला तुम तो की बातें जे नी लिस्म नी का तंचे कुन उर का वा हम बाग ली कांडर तुमर शिकाब जे दाम जा दी जेंग
6: गे अलग तुम यंग सोरी शाज के जब जे तंग लाम लाम जिला सुन्जु सिनी फेसु कुंड करवा तंग सोचे बु नेजी शाजे
2: पुसम ला किंदल्स्य दसिम ला किंदल्स्य बर्तुन ला किंदल्स्य